कुण्ठमाधव जनार्दन चक्रपाणि श्रीवत्स चिह्न शरणागत पारिजात श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्प दर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते काङ्काकुजाम्

पुरार्पित सुजात सुगंधि पुष्प सौरभ्य सौरभ करौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्री वेंकट।

0: చిరునామాను రాసి ది స్టేషన్ డైరెక్టర్ గీతమాలిక, ఆకాశవాణి మార్కాపురం కేంద్రం, మార్కాపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, పిన్కోడ్ 523316 అనే చిరునామాకు పంపించండి. మీరు కోరుకున్న పాటలు విని ఆనందించండి.
1: ఇప్పుడు న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ ద్వారా కూడా మీరు మార్కాపురం ఎఫ్ఎం రేడియో కార్యక్రమాలు వినవచ్చు.
0: వేవ్స్ యాప్ ఓటీటీ ద్వారా కూడా ఎఫ్ఎం మార్కాపురం కేంద్ర కార్యక్రమాలు వినవచ్చు.
1: ఫిలిం గీతాలు మీరింతవరకు విన్నారు ఆకాశవాణి మార్కాపురం 101.5 ఎఫ్ఎం. సమయం సాయంత్రం 6 గంటలకు అవస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ముందుగా హిందీలోనూ ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలోనూ ప్రసారమవుతాయి ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है. शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है.
3: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है. हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था. अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है. ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है. इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा.
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है. इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए. राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है. कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई. उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की.
4: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है. क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकाश ने पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते.
2: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की. ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है. नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया. डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है. त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया

और जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन जो आपके हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हैं और टीम जब बहुत दो अच्छी बड़ी विक्ट्री दर्ज करके आ रही है इस गेम में, तो और वैसे तो ऑलरेडी इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जैसे उन्होंने सजेशन दिया है वो ठीक है, लेकिन टीम मैनेजमेंट भली भांति जानता है कि भले ही आपका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, 14-3 का रिकॉर्ड है और आपने एशिया कप में भी वो डोमिनेंस दिखाई भी है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ गेम आता है तो एक अलग तरीके का प्रेशर तो रहता ही है, फील्ड पर भी रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, और वो जो कहते हैं ना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस वो रहती ही रहती है, और ये एक सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही नहीं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ है, क्योंकि जीतना का जज्बा तो दोनों तरफ ही है, लेकिन एक जो भारी दबाव भी है जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर वो भी रहता है, तो ऐसे में कोचेज जो होते हैं टीम मैनेजमेंट होता है उनका यही होता है, मतलब ज़्यादा तवज्जो इसी चीज़ पर होती है।

0: Luckily for her, the ball not taking the outside edge. So wickets have fallen rather easily here. And the Pakistan batters have not shown any stomach for the fight at all. They have caved in meekly. This has been a meek surrender as we watch the next one outside the off stump, left alone by the batter. And the total after completion of 18 overs is 55 for 9. Will they be able to bat over the complement of the next two overs? To describe, it is going to be Dharmendra Mani Rajesh.
1: So Pakistan ne abhi tak banaye hain 18 overs ke baad 55 run 9 wicket ke nuksan par. और श्री चढ़नी ने इस बीच में अपने चार ओवर का कोटा पूरा कर लिया है. बहुत किफायती रही है अभी तक भारत की तमाम गेंदबाज. श्री चढ़नी भी उसमें से शामिल. चार ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए हैं. रन रेट पाकिस्तान का 3.06 का. दो ओवर की बल्लेबाजी और पाकिस्तान के लिए बची हुई है. दिलचस्प ये है कि क्या वो दो ओवर यानी 12 गेंदों का सामना अंतिम विकेट की साझेदारी में पाकिस्तान की टीम कर पाएगी.

0: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली गेंद इस ओवर की और स्टंपिंग का एक मौका, क्या स्टंपिंग का वो मौका हाथ से गया या विकेट भारत के खाते में आ गया है। इस समय तीसरे अंपायर की तरफ फैसला और इंतजार इस बात का कि तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है। लेग स्टंप पर थी गेंद, क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास किया, गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी सादिया।
1: एमएसएमईज असेंबलिंग प्रोडक्ट,
0: इकबाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुबह हसन थे स्ट्राइक पर
1: प्लान और रिजन
0: पूरी तरह से गेंद को समझ नहीं पाई। अंपायर ने
1: प्रेफरेंशियल
0: पर आउट तो करार दिया लेकिन तीसरे अंपायर को यह फैसला देना है कि क्या क्रीज में पहुंची थी या नहीं। इंतजार तीसरे अंपायर के फैसले का।
1: दीप्ति
0: शर्मा की गेंद थी, क्रीज से बाहर निकली थी, पल्ला चलाया था, गेंद की लाइन को चूकी, ऋचा घोष ने गेंद को पकड़ा सफाई से, गिल्लियां बिखेर दी और ऐसा लग रहा है कि अपनी क्रीज में नहीं पहुंच सकी थी बल्लेबाज सुबा हसन जो 9 रन बनाकर खेल रही थी। और अंपायर का फैसला आता हुआ 55 रन पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है भारत के खिलाफ। ये उसका न्यूनतम स्कोर अब भारत को जीतने के लिए बनाने हैं 56 रन। किस तरह से भारतीय टीम वो 56 रन बनाती है ये विवरण देने के लिए हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ रूल 20 कार्यक्रम।
1: एक्सपोर्टर्स

0: बचपन पे ऑल आउट हो जाना
1: एरिया. द
0: पाकिस्तानी जो
1: सेकेंड
0: बहुत ही
1: डीप टेक एंड
0: जिसे
1: क्लीन
0: कहते
1: टेक
0: हैं कि
1: विच यू आस्क्ड
0: शर्मनाक
1: अबाउट.
0: बैटिंग
1: इंडियन
0: रही है,
1: लीग
0: और
1: हैव स्पेसिफिकली
0: खास तौर
1: लॉन्च्ड
0: से
1: एन
0: इसमें
1: ईयू
0: जितनी
1: इंडिया
0: भी
1: स्टार्टअप
0: तारीफ करें हम अपने
1: पार्टनरशिप
0: इंडियन बॉलर्स
1: इनिशियली
0: की,
1: ऑन
0: स्पिनर्स
1: डीप
0: की,
1: टेक एंड
0: जैसे कि
1: क्लीन टेक.
0: लतीका जी ने
1: एंड द
0: कहा,
1: टू साइड्स हैव
0: प्रेमा
1: ऑल्सो
0: रावत है,
1: कोऑपरेटिंग ऑन
0: दीप्ति है, श्री चढ़नी
1: सेमीकंडक्टर्स,
0: है,
1: क्वांटम
0: काबिले
1: टेक्नोलॉजी,
0: तारीफ बॉलिंग
1: एआई, हाई
0: रही है,
1: परफॉर्मेंस
0: बिल्कुल भी
1: कंप्यूटिंग
0: पाकिस्तान
1: एंड
0: के
1: सिक्स
0: जो
1: जी. सो इफ आई लुक एट
0: बैटर्स हैं
1: सम ऑफ द
0: उनको उन्होंने बिल्कुल
1: पोटेंशियल
0: भी है ना
1: इंडिया
0: जिसे
1: स्टार्टअप
0: कहते हैं कि
1: एरियाज
0: बिल्कुल
1: दैट वुड
0: अलाउ ही
1: हैव
0: नहीं
1: द
0: किया
1: होल
0: कि है ना
1: थिंग
0: कि वो
1: अराउंड
0: किसी तरीके
1: बैटरी,
0: की भी है
1: बैटरी
0: ना मोमेंटम
1: साइक्लिंग,
0: गेन कर सके,
1: ग्रीन
0: किसी तरीके की
1: हाइड्रोजन,
0: साझेदारी कर
1: कार्बन
0: सके.
1: मैचरमेंट, एनर्जी
0: एक
1: स्टोरेज,
0: मुझे लगता है कि यहाँ
1: इंडस्ट्रियल
0: पर भारत को बिल्कुल
1: डीकार्बोनाइजेशन,
0: भी प्रॉब्लम नहीं होनी
1: एडवांस्ड
0: चाहिए इस
1: मटेरियल्स,
0: मैच में,
1: क्वांटम
0: भारी से भारी शिकस्त
1: टेक्नोलॉजीज,
0: देना
1: रोबोटिक्स.
0: पाकिस्तान को.
1: देयर इज ऑलरेडी अ प्लान
0: लतिका
1: ईयू
0: श्री
1: इंडिया
0: चन्नी की
1: इनोवेशन हब फॉर
0: बात
1: ईवी
0: और
1: चार्जिंग
0: उनकी
1: टेक्नोलॉजीज एंड
0: बोलिंग में
1: टेस्टिंग,
0: क्या
1: दिस
0: जादू है,
1: कुड
0: क्योंकि
1: बी अ
0: पाकिस्तान
1: ह्यूज
0: श्री चन्नी
1: इंटरेस्टिंग
0: को
1: नीश
0: पिक
1: फॉर
0: कर ही
1: स्टार्टअप्स
0: नहीं
1: इन
0: सकता.
1: इंडिया. एंड
0: उन्होंने
1: देयर इज ऑल्सो
0: वर्ल्ड
1: अ
0: कप में
1: क्लाइमेट
0: भी तीन
1: टेक एंड
0: विकेट लिए
1: ईयू
0: थे पाकिस्तान के
1: कंप्लायंस,
0: खिलाफ,
1: दिस इज अनदर
0: और आज भी
1: अपॉर्चुनिटी
0: तीन
1: बिकॉज
0: विकेट,
1: एज
0: मतलब
1: लिसनर्स
0: इतना
1: यू
0: टाइम
1: आर
0: हो
1: अवेयर,
0: गया वर्ल्ड कप
1: गवर्नमेंट
0: में और एशिया
1: कंपनीज
0: कप में,
1: इंक्रीजिंगली हैव टू डेमोंस्ट्रेट
0: क्या
1: थिंग्स लाइक
0: प्रॉब्लम
1: कार्बन
0: हो रही है कि
1: फुटप्रिंट,
0: पाकिस्तान को कि वो श्री
1: सस्टेनेबिलिटी ऑफ
0: चन्नी
1: सप्लाई
0: को
1: चेन.
0: हैंडल ही
1: आई
0: नहीं कर
1: मेंशन
0: पा रहे?
1: ट्रेसेबिलिटी
0: देख,
1: अर्लियर,
0: श्री
1: दीज आर
0: चन्नी जिस
1: ऑल क्रिएटिंग
0: ट्रेजेक्टरी से
1: अपॉर्चुनिटीज फॉर
0: गेंदबाजी करती हैं,
1: इंडियन
0: जिस तरीके से
1: स्टार्टअप्स टू
0: हाथ से
1: बिल्ड
0: वो गेम को
1: कंप्लायंस एज
0: छोड़ती
1: अ
0: हैं,
1: सर्विस
0: और जो
1: प्लेटफॉर्म
0: उनका
1: अगेन इन
0: जहां
1: आईडी
0: पर
1: टेक,
0: बॉल
1: फूड टेक
0: गिरता है
1: एक्सेट्रा, देयर
0: वो
1: आर ह्यूज
0: जज करना, वहां से
1: अपॉर्चुनिटीज.
0: डिसीजन
1: नाउ
0: लेना
1: बोथ
0: कि किस तरीके के
1: मिनिस्टर्स
0: शॉट आप खेल
1: अंडरलाइंड
0: सकते हैं. ऊपर से
1: अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन
0: पाकिस्तानी
1: एंटरप्रेन्योर्स,
0: प्लेयर्स
1: व्हाट
0: जो है
1: प्रैक्टिकल
0: अगेंस्ट जो
1: स्ट्रक्चर्स,
0: स्पिन है उसके
1: एक्सपोर्ट
0: अगेंस्ट खेलने की
1: कंसोर्शियम,
0: कोशिश
1: कॉमन
0: कर रहे थे,
1: फैसिलिटी
0: जिसकी वजह से एक
1: सेंटर्स
0: कैच
1: और डिजिटल
0: हमने
1: मार्केट
0: बैकवर्ड पॉइंट पे
1: प्लेसेस
0: भी
1: शुड बी
0: देखा, फिर
1: स्केल्ड
0: एलबी
1: नाउ.
0: हमने
1: सो
0: देखा.
1: वुमेन
0: तो
1: लेड
0: ये दर्शाता है कि
1: एमएसएमईज
0: श्री
1: कैन
0: चन्नी
1: कन्वर्ट
0: कितनी
1: एफटीए
0: वेरिएशंस
1: अक्रॉस
0: यूज
1: इनटू
0: करती हैं अपनी
1: रियल
0: स्पीड
1: ऑर्डर्स.
0: में,
1: एमएसएमईज
0: अपना
1: एंड
0: लूप
1: सॉरी
0: किस
1: वुमेन
0: तरीके से
1: एंटरप्रेन्योर्स और
0: देती है,
1: स्टार्टअप्स
0: और
1: द
0: किस तरह की
1: रिक्वायरमेंट इज
0: लाइन
1: नॉट
0: लेंथ भी रखती
1: सब्सटेंशियली
0: हैं.
1: डिफरेंट,
0: हमने एक बॉल
1: बट
0: देखा था उसमें जब
1: एफटीए
0: उन्होंने
1: इटसेल्फ
0: थोड़ा
1: इंक्लूड्स
0: सा
1: प्रोविजंस
0: जो
1: ऑन
0: है
1: वुमेन्स
0: थोड़ा
1: इकोनॉमिक
0: हल्का तेज छोड़ा था,
1: एंपावरमेंट
0: उसका
1: एंड जेंडर
0: अगला ही गेंद
1: इक्वालिटी.
0: उन्होंने हल्का
1: व्हाई
0: पीछे
1: द
0: रख के
1: एमएसएमई
0: धीरे छोड़ा,
1: प्रोविजंस आर
0: जिसमें
1: इंटेंडेड
0: उनको
1: टू मेक
0: एलबीडब्ल्यू
1: मार्केट
0: मिला. तो ये
1: इंफॉर्मेशन
0: इस
1: एंड
0: तरीके की
1: एक्सेस फॉर
0: गेंदबाजी
1: स्मॉलर फर्म्स.
0: अगर
1: बट इफ यू
0: आप
1: लुक एट
0: एक
1: वुमेन
0: महिला
1: एंटरप्रेन्योर्स अगेन
0: बल्लेबाज हैं
1: टिपिकली
0: तभी आप समझ
1: टेक्सटाइल्स
0: पाएंगे,
1: अपैरल्स
0: लेकिन
1: एंड फैशन
0: मुझे
1: कुड
0: लगता है
1: बी
0: कि
1: वन
0: पाकिस्तान
1: एरिया.
0: के
1: फूड
0: बल्लेबाज
1: प्रोसेसिंग एंड
0: या
1: एग्री
0: तो ओवर
1: बिजनेस कुड बी
0: कॉन्फिडेंट
1: अनदर
0: मुझे लगे
1: स्पाइसेस
0: बल्लेबाजी में,
1: बिकॉज़
0: जिस
1: इट
0: तरीके की
1: प्रिजर्व्स वेरी
0: शुरुआत
1: स्वीट
0: जरूर
1: फूड्स
0: अच्छी की
1: मिलेट
0: थी
1: बेस्ड
0: वहां
1: प्रोडक्ट्स
0: पर,
1: और
0: लेकिन उसके
1: मखाना
0: बाद
1: बेस्ड
0: भी
1: प्रोडक्ट्स.
0: लगातार
1: एंड इफ यू
0: आप
1: लुक एट
0: अंतराल
1: डिजिटल
0: में विकेट्स
1: बिजनेसेस
0: जो
1: अगेन,
0: है
1: नाउ यू
0: गंवाते रहे,
1: पर्टिकुलरली
0: जिसकी वजह
1: इंटरेस्टिंग
0: से ये
1: अपॉर्चुनिटी
0: आई थिंक
1: एज
0: सबसे
1: वुमेन
0: लोएस्ट
1: लेड
0: जो
1: एक्सपोर्ट
0: है टोटल
1: एनेबलर्स.
0: होगा
1: सो
0: पाकिस्तान
1: देयर
0: का
1: कुड बी अ
0: 55
1: डिजिटल
0: रन.
1: प्लेटफॉर्म
0: तो
1: देयर
0: यहां पर
1: वुमेन
0: श्री चन्नी
1: लेड एंटरप्रेन्योर्स
0: जितनी
1: कैन एंटर
0: तारीफ
1: द
0: करें
1: यूरोपियन
0: उतनी कम है
1: मार्केट.
0: कि
1: सो
0: चार
1: अगेन
0: ओवर में
1: व्हाट
0: आपने
1: इज वेरी
0: सिर्फ सात
1: इंटरेस्टिंग
0: रन
1: फॉर द
0: देखे,
1: वुमेन,
0: तीन
1: व्हाट
0: विकेट
1: वी
0: लिए,
1: नीड
0: बेस्ट
1: टू डू एंड दिस
0: आपने
1: इज वेरी
0: यहां पर
1: इंपॉर्टेंट.
0: गेंदबाजी की
1: करेंटली
0: है.
1: वुमेन हैव अ
0: और
1: लॉट ऑफ
0: सभी
1: एक्सेस
0: जैसे
1: टू
0: आप
1: क्रेडिट
0: लगातार
1: बट दे
0: मेंशन कर
1: डोंट
0: रहे
1: हैव
0: थे
1: ग्रोथ
0: शॉर्ट
1: कैपिटल.
0: सिलेक्शन,
1: सो देयर
0: लतिका
1: नीड
0: ने
1: वर्किंग
0: मेंशन किया
1: कैपिटल
0: अगेंस्ट
1: लिक्विडिटी
0: द
1: एक्सपोर्ट
0: टर्न खेलने
1: फाइनेंस
0: की
1: एंड
0: कोशिश,
1: ग्रोथ
0: उस
1: कैपिटल
0: विकेट पर
1: प्लेसेस.
0: जहां पे
1: दिस इज व्हाट
0: ऑलरेडी
1: द सेकंड
0: स्पिनर्स को काफी
1: इज
0: मदद
1: हाउ
0: मिल रही
1: डू वी मेक
0: बिल्कुल
1: यूरोपियन
0: स्पिनर्स को,
1: मार्केट
0: जैसे कि
1: एक्सेस
0: दुबई के
1: इजी
0: स्टेडियम्स
1: फॉर
0: हमेशा
1: वुमेन
0: स्लो सर्फेस रहती
1: हाउ
0: है,
1: डू वी
0: और
1: हेल्प
0: यहां
1: देम
0: पर
1: विद
0: जो भी
1: अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स
0: चाहे
1: सर्टिफिकेशन
0: मेंस मैचेस हो या
1: पैकेजिंग
0: वुमेन्स मैचेस हो,
1: लेबलिंग. यू
0: ज्यादातर
1: टॉक
0: टीम्स
1: अबाउट
0: का
1: रूल्स
0: रहता
1: अबाउट
0: है कि
1: अर्लियर
0: हमें कि जल्द से जल्द
1: टैक्सेशन
0: स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस
1: कस्टम्स,
0: किया
1: एंड
0: जाए
1: व्हाई
0: अटैक
1: दी
0: में, ताकि वो स्लो
1: एफटीए
0: सर्फेस का पूरा फायदा उठा सके, क्योंकि ये रहता है कि जो ग्रिप होती है बॉल की वो उसको करना होता है, रन रेट को स्लो डाउन करना होता है. यहाँ पे तो कोई रन रेट की बात ही नहीं रही जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, लेकिन यही होता है कि जो स्लो सर्फेस है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बॉल रुक के आती है, रुक के आती है शॉर्ट सिलेक्शन में. जैसे हम बात करें कि वो थोड़ा सा बैट्समैन कभी ये होता है कि बाहर आके खेलने की कोशिश करता है लेकिन बॉल उस तरह से बल्ले पर आ नहीं पा रही है, या कई बार स्वीप करने की कोशिश करता है तो एलबीडब्ल्यू हो जाता है, कई बार वो है ना कोई कट मारने की कोशिश करता है तो एज लग जाती है. बहुत सी चीजें होती है स्लो सर्फेस का ही होता है, इसीलिए है ना पाकिस्तान चार स्पिनर के साथ खेल रहे थे, वहीं भारत ने भी जो अपनी स्पिन जो विकेट से निकले वो स्पिन में ही निकले हैं आपके, वो चाहे वो श्री चढ़नी हो, प्रेमा रावत हो, दीप्ति हो, शेफाली जो जिसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छा निर्णय रहा हरमनप्रीत कौर का कि जल्दी ही उन्होंने ना उनको इंट्रोड्यूस कर दिया और उनको शेफाली के पास गए, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी मुनिया और शावल के बीच में, पर वही दो जन है पाकिस्तान के जो डबल डिजिट फिगर में पहुंच पाए. उसके अलावा तो पाकिस्तान का कोई भी है ना कोई भी डबल डिजिट में पहुंच भी नहीं पाया. आई थिंक एक उनकी पाकिस्तान प्लेयर जो नॉर्म बनाए, तो इससे ही पता चलता है कि किस तरीके से दबदबा कायम कर जाता है शुरू से ही पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं है ना पाकिस्तान, जैसे लतीका जी ने भी बोला कि ओवर कॉन्फिडेंट भी के उस शॉर्ट सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपको लग रहा है आपका गेम कहीं जा ही नहीं रहा है, स्कोर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे शॉर्ट सिलेक्शन करिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा अपना टाइम दीजिए. हालांकि टी ट्वेंटी मैचेस में इतना टाइम की भी वो कमी होती है, क्योंकि आपको रन रेट का भी देखना पड़ता है, लेकिन 55 रन के स्कोर से बेहतर रहता है कि थोड़ा बहुत अगर वो और पाकिस्तान के बैटर्स अच्छे से परफॉर्म करते, 90-100 तक जाए तो एक मैच बन के आ जाता है. यहाँ पे 55 रन का जो टारगेट दिया है मुझे तो लगता है कि बहुत आसान होगा स्मृति और शेफाली के लिए, कि हो सकता है पावर प्ले में वो निकाल
2: जाए. क्योंकि इंडिया की टीम एक ऐसी टीम है जिसने 150 रन दो बारी इस टूर्नामेंट में 150 इंडिया ने क्रॉस करे हैं, एंड लतिका लगता नहीं है कि चैलेंजिंग होगा ये टोटल, मगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, उनके पास चार स्पिनर्स हैं एंड

0: Soulful and graceful strokes, a proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
1: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का आरंभ चतुरश्र जाति त्रिपुट ताल से कर रहे हैं।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू बिगिन्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद चतुरश्र जाति त्रिपुट तालम।

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: अब प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पांसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन।

0: जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विट्ठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विट्ठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विट्ठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
1: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Shri Vitthal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Saheb Panse Gharana, Shri Vitthal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vitthalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness and the divine rendition of Chhabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vitthalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaro, Kalidas Samaro and Chakradhar Sangeet Samaro, Vitthalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Shri Vitthal Kumar Rajpura is presenting Jhap Taal on the Pakhavaj. He is accompanied on the Sarangi by Shri Jagdish Barot, providing the Lehra.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाग अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन दे